0: Dolayısıyla zamin program ki ağacımı xas xas xabırın qalı xulasası madfirmalıyım.
1: Türkiye के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इराक के वजीर आजम अली सैदी के साथ टेलीफोन पर मुलाकात की है।
0: ईरान ने ऐलान किया है कि अमरीका के साथ स्विट्जरलैंड के शहर बर्गेनस्टॉक में होने वाले तकनीकी मुजाकरात मुकम्मल हो गए हैं।
1: अमरीका के नायब सदर जे डी वेंस ने कहा है कि तेहरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयना कारों को दोबारा मुल्क में आने की दावत देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है।
0: ईरान के चीफ मुजाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि आबनाए हुरमुज तेहरान के जेर इंतजाम होगी।
1: इसराइली अहदेदार ने कहा है कि अमेरिका ने इसराइल को मतलब किया है कि तेल अबीब को लुबनान में बेरोक टोक कार्रवाई की इजाज़त ख़त्म हो गई है।
0: अरब खबरें तफसील के साथ।
1: तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इराक के वजीर आजम अली सैदी के साथ टेलीफोन पर मुलाकात की है। मुज़ाकरात में तुर्की इराक दो तरफा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत की गई है। सदर एर्दोआन ने कहा है कि आइंदा दिनों में हम तुर्की और इराक के बाहमी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ममालिक में खास तौर पर तवानाई, दिफाई सन्नत और नकलो हमल के शोबों में तआवुन की भारी सलाहियत मौजूद है। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इराक के वजीर आजम अली सैदी को जामे मुशावरत के लिए तुर्की आने की दावत भी दी है।
0: ईरान ने ऐलान किया है कि अमरीका के साथ स्विट्जरलैंड के शहर बर्गेनस्टॉक में होने वाले तकनीकी मुजाकरात मुकम्मल हो गए हैं। ये भी बताया गया है कि ये मुजाकरात कतर और पाकिस्तान की सालसी में ईरान के खिलाफ जारी अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए होने वाली बातचीत के दायरे कार में मुनक्किद किए गए। तकनीकी मुजाकराती वफद की क्यादत करने वाले ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि चार फरीकी मुजाकरात मुस्तकबिल की बातचीत के इंतजाम के हवाले से इतफाक़ राय के साथ अख्ताम पजीर हुए और वर्किंग ग्रुप्स और अमल दरामद के तरीक़ार तय कर लिए गए हैं। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक नायब वजीर खारजा ने कहा कि इस्लामाबाद माहदे के नफाज पर गौर किए जाने वाले ये मुजाकरात इतवार को मुनद होने वाले आला सतही कमेटी के इजलास के बाद जारी रहे। इस इजलास में 17 जून को ईरान और अमरीका के सदूर के दरमियान ऑनलाइन दस्तखत किए गए थे। माहदे और आला सतही इजलास के अख्तितामी एलामिया के नफाज के तरीक़ाकार से मुतालिक तकनीकी मुजाकरात किए गए और ज़रूरी इतफाक़ राय हासिल कर लिया गया है। तयशुदा इंतजाम के मुताबिक आइंदा मुजाकरात एक आला सतही कमेटी की निगरानी में किए जाएंगे जिसमें ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वजीर खारजा अब्बास अराकची, अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अलसानी शरीक होंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि फरीकान ने पाबंदियों के खात्मे, जौहरी से मुतालिक पाबंदियों, नौर तामीर नौर, इक्तिसादी तरक्की और निगरानी और अमल दरामद के मौजूदात पर चार वर्किंग ग्रुप्स के क्याम पर इतफाक़ किया है। नायब वजीर खारजा ने यह भी कहा कि तकनीकी बातचीत में ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के अमूमी लाइसेंस और मुंजमद असासों की रिहाई के इंतजाम पर भी बात हुई है। फरीकान ने इस बात पर भी इतफाक़ किया है कि ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद शुदा फंडस को फौरी तौर पर आज़ाद कर दिया जाएगा।
1: अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस ने बताया है कि मशरक वस्ता में जंग के खात्मे के लिए अमेरिका ईरान मुजाकरात के पहले दौर के बाद तेहरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को दोबारा मुल्क में आने की दावत देने पर रजामंदी जाहिर की है। वेंस ने गुज़श्ता रोज़ स्विट्जरलैंड के बोर्गेनस्टॉक रिजोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरानियों ने आलमी एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तफाक़ किया है। ये अमरीकी आवाम के लिए एक अहम संगे मील है और ईरान में जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने या मुस्तकिल तौर पर तख़वीफ़ असलाह की तरफ कदम बढ़ाने का पहला कदम है। याद रहे कि इनके ये मुज़ाकरात इतवार के रोज़ ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ के साथ शुरू हुए थे। स्विट्जरलैंड में होने वाले ये मुज़ाकरात गुज़श्ता हफ्ते तय पाने वाले इब्तदाई मुआहदे के तहत मुकर्ररा 2 माह के मुज़ाकराती दौर का पहला मरहला थे। सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक पाकिस्तान और कतर ने बताया है कि मुज़ाकरातकारों ने 60 दिनों के अंदर एक हतमी मुआहदे तक पहुँचने के रोड मैप पर इतफाक़ किया है। तकनीकी मुजाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बस्ती स्विट्जरलैंड के एक होटल कॉम्प्लेक्स बोर्गेनस्टॉक में जारी रहेंगे।
0: ईरान के चीफ मुजाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अबनाए हुरमुज तेहरान के जेर इंतजाम

0: रोज बोधरो में दर्ज हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की लहर के बायस एक वाकये में मुल्क के जुनूब में वाकई कारपेंत्रास कस्बे में 2 और 4 साल के 2 बच्चे अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। इसी तरह जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग के हुकाम ने भी रेड अलर्ट जारी किए हैं। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह सहारा रेगिस्तान से शुमाल की तरफ हरकत करती हुई गर्मी की लहर बताई जा रही है, जो मुतासर इलाकों पर गर्म हवा को रोककर महसूर कर रही है। साइंसदान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गर्म लहरों का बार बार आना आलमी हिद्दत की अलामत है, जबकि मेट्रो फ्रांस ने निशानदेही की है कि 1947 से अब तक रिकॉर्ड शुदा 51 गर्म लहर में से 34 साल 2000 के बाद आई और 26 वाकया 2011 के बाद पेश आए हैं। याद रहे कि बर आज़म यूरोप के कई इलाकों में दर्ज हरारत के बुध को उरूज पर पहुंचने की तवक्को है, जबकि पेरिस के लिए 41 डिग्री की पेशगोई की गई है।
1: नॉर्वे ने सेनेगाल के खिलाफ 3-2 की फतह के साथ वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हालैंड के 2 गोलों और मार्कस होलमगिरी पेडरसन के 1 गोल ने इस मैच में नॉर्वे की जीत को यकीनी बनाया, जबकि इस्माइल लारसारन ने सेनेगाल के लिए 2 गोल किए। हालैंड गोल्डन शोज के दौड़ में दूसरे नंबर पर हैं, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी से 1 गोल पीछे और फ्रांस के केलियान मबापे के हम पल्ला। वाइकन्स जो 1998 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इनको जुमा को फ्रांस को हराना होगा ताकि वो ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करें और नॉकआउट में बाजार निस्बतन आसान रास्ता मिले। अगरचे वो मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हुए, सेनेगाल को तीसरी पोजीशन से आगे बढ़ने का कोई मौका मिलने के लिए इराक के खिलाफ जीत दरकार है। स्टेडियम में नॉर्वे की सुर्ख जर्सियां छाई रहीं, जो हालिया दिनों में अपने इज्तिमाई खेल के मुजाहरे के जरिए न्यूयॉर्कर्स को महसूस कर रहे थे। दोपहर के दौरान शदीद बारिश और गरज चमक के साथ तूफान ने शेल्टर इन प्लेस की हिदायत जारी करवाई और फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के दूसरे मैच को आरसी तौर पर मुअत्तल कर दिया। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई। और लीजिए सामिन, अब 2 गीत आपकी समातों की नजर गिरते हैं। पहले गीत के बोल हैं हादी चार और गुलकार हैं सरदार ओरताज। दूसरा गोल है पीरीवार और ग्रुप है पेंदेनिस।